0: गरीब में बहुत हो।
1: बको बको बको इंदे बको केंदे
0: और अबू हुआ ए और अबू कलंदी को पंचागर मारुलियाबा कुरेमिस्ते रेंदे तेमो
1: किंबा
0: तेमो
1: किंबा किंबा ले रिबा का फिकाते ले पाले किसो माविरा न्यांबेतो किबु वातुसी बाबीरा मांबेतो
0: ए रोगो बेबर